0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

सभी जानते हैं श्री गणेश प्रथम पूज्य देव हैं। अतः किसी भी कार्य से पहले इनकी वंदना और आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग सच्चे दिल से इनकी वंदना करते हैं उनकी जिंदगी हर विघ्न बाधाओं से मुक्त एवं सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। अतः हम सबों को इनकी वंदना सच्चे दिल से करने चाहिए। तो आइए हम सभी मिलकर इनकी वंदना करते हैं।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: रसिकभाऊ नमस्कार, आणि मी आहे आरजे श्रद्धा, अर्थातच वारली चित्रकलेवरतीची श्रद्धा, अशी आरजे श्रद्धा. रसिकभाऊ, FLOA म्हणजेच फॉरेन लँग्वेज ऑनलाईन ऍप्लिकेशन्स या कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं अतिशय मनपूर्वक स्वागत. आपण गेल्या काही दिवसापासून विविध मान्यवरांशी गप्पा मारतो आहोत, ज्यांनी फॉरेन लँग्वेज शिकले आहेत किंवा शिकवत आहेत अशा विविध वयोगटातल्या व्यक्तींशी आपण ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून गप्पा मारतो आहोत. शैलेश लेले सर आणि फॉरेन लँग्वेज ऑनलाईन ऍप्लिकेशन यांनी सुरू केलेला एक छानसा इनिशिएटिव्ह म्हणजे जर्मन आणि फ्रेंच भाषा ऑनलाईन पद्धतीने शिकवणं. गेल्या काही दिवसापासून आपण विविध वयोगटातल्या व्यक्तींशी गप्पा मारतो आहोत, त्याच अनुषंगाने आजच्या भागात आपल्याशी गप्पा मारण्यासाठी सहभागी झालेले आहेत खास पुण्याहून शरगुफ्ता अनवर सय्यद मॅडम, ज्या रिटायर्ड प्रिन्सिपल आहेत अंजुमन इस्लाम पॉलिटेक्निक फॉर गर्ल ह्या कॉलेजच्या, त्या 2 वेळा इनरव्हील क्लबच्या प्रेसिडेंट राहिलेल्या आहेत. त्यासोबतच त्यांनी 2 वेळेला सब कॉर्डिनेटर हे पद डिस्ट्रिक्ट लेवलवर भूषवलेलं आहे आणि आता सध्या त्या अंजुम कॅम्पसच्या ऍडव्हायझरी बोर्ड कमिटी मेंबर आहेत. आज त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत आणि त्यांच्याकडून त्यांचा प्रवास आणि फॉरेन लँग्वेज ऑनलाईन ऍप्लिकेशन सोबतचा प्रवास जाणून घेणार आहोत. सगळ्यात आधी मी त्यांचं स्वागत करते. मॅडम, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में.
1: और थँक्यू व्हेरी मच, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी. इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए सबसे पहले मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ.
1: नहीं, इट्स माय प्लेजर टू टॉकिंग टू यू, बिकॉज हमने फॉरेन लैंग्वेज पर बहुत काम किया है एंड आई एम ग्लैड टू दैट जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूंगी.
0: जी जी जी. तर गप्पांना आपण सुरुवात करूया. आता तर पुढचं सगळं संभाषण आपण मराठी आणि हिंदी या भाषेमध्ये करणार आहोत. तर म्हणजे इतका मोठा प्रवास आहे मॅडमचा, इतक्या वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांनी विविध पदं भूषवलेली आहेत आणि खूप छान काम त्यांचं आतापर्यंत आहे आणि त्यांना खूप मान सन्मान आहे ह्या क्षेत्रामध्ये. मुळातच मुलींसाठीच हे पॉलिटेक्निक कॉलेज आणि इथे आपण प्रिन्सिपल राहिलात, तर हा अनुभव कसा होता त्याबद्दल काय सांगा?
1: आरजे श्रद्धा, आय वर्क देअर मीन्स लाईक मी तिथे 20 वर्षापासून काम करत आहे आणि पुन्हा पण पुढे पण माझी इच्छा आहे की मी खूप खूप काम करू. आम्ही मुलींसाठी आणि लेडीजसाठी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हैं, जहाँ पर हम लोग उनको अलग अलग स्किल डेवलपमेंट में डालते हैं. और जहाँ पर मैं प्रिंसिपल थी वहाँ पर, तो अभी भी मेरा वहाँ पर जो भी मेरा मैंने जो कम्युनिटी लिया है, जो सीखा है, मैं चाहती हूँ कि मैं कम्युनिटी को देती रहूँ और काम करती रहूँ. मैं सोशल वर्क बहुत करती हूँ. आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र. मी मराठी बोलू शकते पण इतकी छान नाही बोलू शकते जसं तुम्ही बोलतात आहे. तर हे माझा प्रवास हे आहे की मी एज्युकेशनिस्ट आहे आणि सोशल वर्कर आहे. मी माझ्या हे इच्छा आहे की मी हेच काम करू. या कामात मला खूप खूप आनंद भेटते.
0: आपण खूप पॅशनेटली करता आहात, एकदम डेडिकेशननी करता आहात हे तुमच्या बोलण्यातून जाणवतो आहे. तर हा 20 वर्षातला प्रवास कसा होता? काही अडथळे आले का किंवा काही भागाकडून विरोध झाला का कधी? कारण आपण खूप मोठं पद भूषवत होतात, प्रिन्सिपल म्हटल्यावरती अनेक जबाबदाऱ्या असतात, अनेक लोकांना अनेक पातळ्यांवरती समजून घ्यायचं असतं. तर ही जर्नी कशी होती, घरातून कसा सपोर्ट होता, थोडस तुमच्याबद्दल सुद्धा जाणून घ्यायला आवडेल.
1: श्रद्धा, असं आहे की जब तक की हमको घर से सपोर्ट नाही मिलेगा हम कुछ नाही कर सकते, और स्पेशली हस्बंड का सपोर्ट. तो मेरे हस्बैंड ने भी, मेरे बच्चों ने भी मुझे सपोर्ट किया है, और मैंने जो भी काम किया है मैंने उसको एंजॉय किया है. मैंने हमेशा सोचा है कि काम को अगर एंजॉय किया जाए तो कभी बर्डन नहीं लगता है. और एक हमारे विश्वास के साथ, हमारे दिल से और हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे तो कभी कोई अड़चन नहीं आती है. और अड़चन भी आई तो उसका सोल्यूशन हमको निकालना है और आगे बढ़ना है. तो इस चीज के साथ मैंने अपना सफर गुजारा है. इनफैक्ट अगर आप कहेंगे कि मैंने इतना भी मतलब हेल्प की है गर्ल्स की, कि कभी कभी मैं देखती थी कि कुछ कुछ स्टूडेंट जो है वो एग्जाम नहीं देते हैं और बैठे रहते हैं, तो मैं बोलती हूँ भाई बेटा आपने एग्जाम क्यों नहीं दे रही हो, आज तो पेपर चल रहा है आपका, तो प्रैक्टिकल चल रहा है. मैडम प्रैक्टिकल के लिए मेरे पास मटेरियल नहीं है. इमिडिएटली हमने उसको मटेरियल प्रोवाइड किया है और उसको काम करवाया है. एजुकेशन के लिए मुझे लगता है कि अगर हम जितना भी काम करें अपनी इंडियन कम्युनिटी के लिए तो उतना वो सब कम है, क्योंकि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो मैं इस पर विश्वास करती हूँ और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ती हूँ, और जहाँ भी मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है मैं जरूर देती हूँ।
0: इतनी नेकी से आप काम कर रही है मैम, बहुत अच्छा लग रहा
1: थैंक
0: है
1: यू,
0: आपसे बात करते हुए। बिल्कुल,
1: थैंक यू वेरी मच।
0: आज के इंटरव्यू से बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं इंस्पायर होने वाली है आपकी बातचीत
1: थैंक
0: सुनकर।
1: यू। मैं एक शेर बोलूंगी यहाँ पर, आपने जब कहा है तो
0: जी
1: काम
0: जी
1: करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर के मिसाल बन जाए।
0: क्या बात है,
1: जी
0: बहुत
1: तो
0: बढ़िया।
1: जी
0: तो गर्ल्स कम्युनिटी में आप इतने सालों से काम करती रही, उसके
1: जी
0: बाद मतलब उसी दौरान आप इनर व्हील क्लब की भी प्रेसिडेंट रह चुकी है।
1: बिल्कुल
0: जब आप प्रेसिडेंट थे 2 साल, तब इनर
1: जी।
0: व्हील काम किस तरह से चल रहा था? कुछ एक्स्ट्रा के एफर्ट्स आपने डाले होंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स
1: एक्चुअली
0: किए होंगे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल किए हैं शरणा, बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं। इनर व्हील एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, और हम इंडिया के डिस्ट्रिक्ट 313 के लिए काम करते हैं, जहाँ पर मैं 2 बार प्रेसिडेंट बन चुकी हूँ। और उनके अपना प्रोजेक्ट्स होते हैं हमको, जैसे कि इसमें ओल्ड एज होम्स में काम करना है हमको, ऑर्फनेजेस के लिए काम करना है हमको, मेडिकल के लिए काम करना है हमको, इसमें इन्वायरमेंट के लिए काम करना है। तो अलग अलग फील्ड में हम पूरा पूरा हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होकर काम करें, और एजुकेशन में भी, और मैं खासतौर से मेडिकल में मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं, और स्पेशली जो मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट था मेडिकल में भी, कि सर्वाइकल कैंसर चेकअप के लिए, तो उसमें भी हमको सर्वाइकल कैंसर चेकअप में मैंने ऑलमोस्ट मेरे 10 ईयर में 80 लेडीज का चेकअप हो चुका है, और जो भी लेडीज ने किया है उनको फ्री प्रयास ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ है प्रयास, उनके थ्रू हमको वैन आती थी, और हर हम स्कूल में बोलो, बस्ती में बोलो, वहां पर हम कैंप लगाकर हम ये, और उसमें जो भी लेडीज को अगर कोई पॉजिटिव कुछ रिजल्ट आता है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें मुझे बड़ी खुशी होती है कि कोई तो हमने किसी के तो काम आए हैं और कुछ तो हमारा फायदा हुआ है। सेकंड चीज, हमने एजुकेशन में भी काफी काम किया है, हमने इनर व्हील के थ्रू हम लोगों ने इसको स्कूल के स्पॉन्सर किया। मेरे लिए ना, मतलब श्रद्धा, एक इनर व्हील और एक अंजुमन कैंपस मेरे लिए 2 प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं ये काम करती हूँ। इनर व्हील के प्रोजेक्ट अंजुमन को लाती हूँ, अंजुमन के थ्रू इनर व्हील को भी हम हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इसमें जाते हैं जैसे कि ओल्ड एज होम्स में जाते हैं, तो मैं अपने अंजुमन के ब्यूटी कल्चर स्टूडेंट्स को लेकर जाती हूँ, और हमारे जितने ओल्ड एज होम्स में जो लेडीज रहते हैं बेचारे, मतलब रहते के कोई बात तो करे उनके साथ आकर, तो उनके लिए हम पैम्परिंग सेशन रखते हैं जहाँ पर वो उनके हेड मसाज देते हैं, उनको पेडिक्योर मैनिक्योर करते हैं, बॉडी मसाज देते हैं, वो लोग बहुत खुश होते हैं, और हम लोग
0: क्या
1: यही खुशी सबके चेहरे पर देखना चाहते हैं। हमारा
0: बात।
1: इनर वेल का मोटो यही होता है कि हम सभी की हेल्प करते रहे और अलग अलग फील्ड में करते रहे। तो इसी तरह एक फील्ड मेरे लिए आया है, फॉरेन लैंग्वेज ऑनलाइन एप्लीकेशन, और उसके लिए भी मैंने एक ही अंजुमन में नहीं किया है, दूसरे भी स्कूल्स में किया है।
0: तुम्ही 2 वेळा सब कोऑर्डिनेटर सुद्धा राहिलेले आहात,
1: हो
0: मग तेव्हा तुमच्यावरती कोणकोणत्या जबाबदाऱ्या होत्या आणि ते
1: हे
0: काम?
1: होतं की आमच्या हे काम सब झोनल सब कोऑर्डिनेटर असे होतात की त्यांच्या अंडर, म्हणजे 4 से 5 क्लब मेरे अंडर में रहे हैं, तो उन पर ध्यान देना है, वो वहाँ के प्रेसिडेंट सब बराबर कर रहे हैं कि नहीं, उनके मिनट्स जा रहे हैं कि नहीं, उनका टाइम टू टाइम आप उनके मेंबर्स को सब कुछ मिल रहा है कि नहीं, उनके प्रोजेक्ट्स ठीक से हो रहे हैं कि नहीं। तो हमारा एक्सपीरियंस जो है हम उनको बताते हैं, उनको सिखाते हैं और उनके साथ में काम करते हैं। और सारे पूना में अभी तो ज्यादा, जब मेरे टाइम में 18 क्लब्स थे, अभी तो 22 हो गए हैं आई बिलीव। तो हम सारे ही क्लब्स के मेंबर्स को एक साथ लाकर, प्रेसिडेंट्स को एक साथ लाकर एक बड़ा सा प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें मैं एक एक्सपीरियंस बताऊंगी आपको कि मैं हमारा हमने मास मैरिज किया था। मास मैरिज में हमने कुछ 11 कपल्स की शादियां करके दी थी तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो
0: जी,
1: ये होता है जोनल सब कोऑर्डिनेटर का काम। थैंक
0: वाह क्या बात है, बढ़िया। उसके बाद
1: यू।
0: हम आएंगे अंजुमन कैंपस के बारे में, थोड़ा मैं जानना चाहूंगी।
1: जी
0: इतना सारा तजुर्बा होने पर ही कोई व्यक्ति एडवाइस कर सकती है ना? तो
1: यस
0: आपके
1: करेक्ट।
0: पास वो इतनी सारी जमा पूंजी हो गई है कि यू आर द राइट एंड अथॉरिटी पर्सन हु
1: थैंक
0: एडवाइस।
1: यू थैंक यू वेरी मच।
0: जी।
1: मैं अंजुमन कैंपस के बारे में ये बताना चाहूंगी कि वहां पर हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑफनेज है अभी। एट द टाइम वहां पर 133 इनमेट्स है, मतलब गर्ल्स हैं, और उनको 5 ईयर्स से लेते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं। और हमारे पास उर्दू मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जूनियर कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है। तो हम उनको पूरी तरह से उनको एजुकेशन देकर उनको सेल्फ रिलायंट करते हैं। जैसे कि कोई ना कोई उनको हाथ में ब्यूटिशियन का कोर्स दे दिया, या उनको टेलरिंग करा दिया, फैशन डिजाइनिंग करा दिया, इस तरह से उनको सेल्फ रिलायंट बनाकर, और फिर उनकी शादियां होती है।
0: क्या बात है,
1: जी मैम।
0: म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की त्या मुलींना स्वतःच्या पायावर उभं करून मग आपण त्यांच्या संसारासाठी त्यांना आपण सक्षम करतो, असं म्हणायला काही हरकत
1: बरोबर, बिल्कुल बरोबर। और
0: नाही।
1: नॉट ओनली फॉर मुस्लिम बट आउटसाइडर्स ऑल्सो, ऑल द कास्ट, वी आर सेक्युलर ऑर्गनायझेशन।
0: जी, समाजातल्या सगळ्या स्तरावरच्या महिलांना आपल्या पायावर उभं करून त्यांचं शिक्षण करून त्यांना वैवाहिक आयुष्यासाठी आपण सक्षम करत असतो, असं म्हणायला काही
1: येस,
0: हरकत नाही।
1: थँक यू श्रद्धा। मी एकटी नाही आहे, खूप मोठी टीम आहे आमची।
0: नक्कीच। बरं, आता आपण येऊया फॉरेन लँग्वेज ऑनलाइन ऍप्लिकेशन्स कडे।
1: येस
0: तुम्हाला
1: श्रद्धा।
0: शैलेश लेले सरांचा परिचय नेमका कधी झाला आणि अशा पद्धतीची ही कॉन्सेप्ट सुरू आहे हे कधी समजलं?
1: मी तिथे जेव्हा प्रेसिडेंट होती 2022-23 मध्ये, त्यावेळी आमचे डिस्ट्रिक्ट चेअरमॅन होते मुक्ती पानसे मॅडम। मुक्ती पानसे मॅडमने हे कॉन्सेप्ट आणला की चला आपण सगळे मिळून हे फॉरेन लँग्वेज सुरू करूया म्हणून, आणि त्यांनी आमची ओळख करून दिली आमचे सर शैलेश लेले सर। और शैलेश लेले से मिलकर हमको बहुत खुशी हुई जब उन्होंने बताया इस लैंग्वेजेस के बारे में। और सबसे अच्छी बात यह थी कि बच्चों को हमको ज्यादा बर्डन नहीं था फीस का, क्योंकि हम लोग जिस पॉकेट के लिए काम करते हैं, हम लोग जैसे कैसे कहेंगे कि जैसे बस्ती में भी जाके बच्चों को लाते हैं और हम लोग उनको पढ़ाते हैं, तो उस टाइप के उस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए जो फीस का जो अमाउंट था वो बहुत कम था। क्योंकि शैलेश ने पहले से ही, इन्होंने मिस्टर लेले ने प्लान किया था कि उन्होंने कंपनी का CSR लेकर आया था, और मतलब एक ही स्टूडेंट को 175 रुपीज सिर्फ हम उनको एग्जाम फीस देनी होती है। तो वो जब से अभी तक भी ये चल रहा है, और मैं समझूंगी कि बहुत अच्छा काम चल रहा है।
0: तुम्ही खूप छान मुद्दा इथे उपस्थित केला की ज्याच्यावरती मी येणारच होते की अगदी पॉकेट फ्रेंडली आहे, तर ह्या गोष्टीचं कायमच कौतुक आहे। सरांनी खरोखरच हा खूप छान एक इनिशिएटिव्ह घेतलाय की अतिशय
1: बरोबर
0: कमी माफक दरामध्ये आपण ह्या भाषा शिकू शकतो। तर ज्यावेळेला
1: करेक्ट
0: तुम्हाला ह्या कोर्स बद्दल समजलं मग तुमचा काय याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन
1: हे
0: होता?
1: झालं की आम्ही त्यांना इन्व्हाइट केला मुक्ती मॅडमला आणि आमचे टीचर्सला आणि लेले सरला, आणि आमचे हॉल मध्ये आम्ही एक प्रोग्राम केला। त्याच्यामध्ये लेले सरनी हे फॉरेन लँग्वेज बद्दल खूप माहिती दिली, आणि त्यांनी सांगितलं की हे कसे चालणार आहे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अँड लेवल 4। आणि त्यांनी हे पण सांगितलं की जेव्हा पण आम्हाला त्यांची गरज असेल या कुछ मदत चाहिए तो वो हमेशा हमको हेल्प करेंगे। और वैसा ही हुआ है, लेले सर को हमने जब भी फोन किया है, लेले सर ने आकर हमारे अंजुमन कैंपस में हमारे लिए काम किया है। ये यहाँ पर नहीं, मैंने एक लेडी जुबैदा में भी इनको बुलाया था, वहां भी वो बराबर टाइम पर आकर और पूरे हमारे प्रोग्राम में उन्होंने बताया था फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। और जब से अभी तक उधर भी ये प्रोग्राम चल रहा है। थर्ड स्कूल मैंने लिया था सरदार दस्तूर स्कूल। तो मैं अभी आपको बताना चाहूंगी श्रद्धा के फर्स्ट टाइम मेरे अंजुमन में 100 स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के इनरोल हुए थे, उन्होंने रजिस्टर किया था। उर्दू मीडियम से 48 स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए थे, लेडी जुबेदा से 80 हुए थे, और मुझे सबसे अच्छा रिस्पांस मिला था सरदार दस्तूर स्कूल से 680 स्टूडेंट्स।
0: वाह
1: तो ऑलमोस्ट मेरे पास 900 स्टूडेंट्स थे उस साल में, और
0: क्या बात
1: बहुत मजा आया था इसमें काम करने से।
0: है,
1: इसका
0: वाह
1: बेनिफिट भी बहुत है। ये ग्लोबल लैंग्वेज है, मतलब हम लोगों का आजकल पूरा इंडिया में हर जगह पर सब चीज ग्लोबल हो गई है। हमारे
0: जी
1: फोन में, हाथ में फोन होता है और हम फॉरेन में क्या चल रहा है वो सीख देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फॉरेन लैंग्वेज भी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। ये एक बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज देती है। बच्चे जहां भी जाएंगे, अभी जैसे नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गए हैं, टूरिज्म में है, एजुकेशन में है, जहां पे ट्रांसलेशन करना मुश्किल होता है, इंटरनेशनल बिजनेस है, इसमें बहुत फायदा है। और उसके साथ साथ मैं बताऊंगी कि फॉरेन लैंग्वेज से बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, इम्प्रूव होता है, बेटर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए इजी होता है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि माय सन इज आल्सो डॉक्टर, माय हस्बैंड इज अ डॉक्टर बाय द वे, माय सन इज आल्सो डॉक्टर, देन ही वेंट टू जर्मनी। तो जर्मनी में वहां पर वो लोग इंग्लिश को तो बिल्कुल ही कुछ वो नहीं देते हैं इम्पोर्टेंस, वो लोग अपनी ही लैंग्वेज बोलते हैं। तो ही हैज टू लर्न जर्मन लैंग्वेज फर्स्ट एंड देन वो वहां पर गया है। लेकिन ये बच्चे अगर फ्यूचर में वहां जाते हैं, जहां भी जाते हैं दुनिया में, उनके लिए बहुत फायदा है। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनको कल्चरल अंडरस्टैंडिंग आएगी, उनकी पर्सनल ग्रोथ होगी और लर्निंग एबिलिटी भी बढ़ेगी, ऐसा मेरा ख्याल है।
0: क्या बात, बढ़िया।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: ह्याचा अजून एक प्लस पॉइंट असा आहे की आपण कुठल्याही वेळेत आणि कुठल्याही वयोगटातली व्यक्ती शिकू शकते, म्हणजे फक्त शाळेतले विद्यार्थी किंवा कॉलेजचे विद्यार्थी नाही, तर
1: नाही,
0: ऑल एज ग्रुपच्या लोकांसाठी हा कोर्स आहे। आणि
1: बरोबर,
0: ऑनलाईन शिकल्यामुळे तुम्ही दिवसभरातली कामं आटपून किंवा ज्या काही गृहिणी आहेत, जे सिनियर सिटीजन आहेत, ते विरंगुळा म्हणून सुद्धा एखादी भाषा शिकू शकतात, किंवा
1: बरोबर,
0: आपली मुलं तिथे आहेत म्हणून त्यांच्यासाठी आपल्याला भाषा यायला हवी म्हणूनही शिकू शकतात। तर ह्याबद्दल
1: बरोबर।
0: तुम्हाला काय वाटतं?
1: आमचे आमचे खूप सारे टीचर्स ने शिकलेले आहे, हमारे बहुत सारे टीचर्स ने भी सीखे हैं, इवन लेडी जुबैदा के टीचर्स ने भी सीखे हैं। मुझे लगता है कि लैंग्वेज और ये जो चला रहे हैं शैलेश जी, इसके लिए हमको कोई एज वो नहीं चाहिए। हम कोई भी एज में किसी को भी हम लोग इनरोल कर सकते हैं, और कोई कास्ट का कोई टाइप नहीं है, कोई भी कास्ट के लोग इसको सीख सकते हैं। मराठी वाले स्टूडेंट्स भी सीख रहे हैं, मराठी मीडियम वाले भी, इंग्लिश वाले भी और उर्दू वाले भी। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हर एक के लिए ओपन है, टाइम की कोई बाउंडिंग नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि अगर कोई लेडी है, हाउसवाइफ है और घर में काम कर रही है, उसके बावजूद उसको सीखना है तो जरूर सीख सकती है। सभी को हम वेलकम करते हैं इस लैंग्वेज के लिए।
0: बढ़िया। एवढ्या वर्षांमध्ये अनेक अनुभव असतील आणि फॉरेन लँग्वेज ऑनलाईन ऍप्लिकेशन चे सुद्धा काही वेगळे असे अनुभव असतील की एखाद्या विद्यार्थ्याने खूप घवघवीत यश मिळवलं किंवा त्याचा पेपरला फोटो आला, अशी
1: यस
0: काहीतरी
1: श्रद्धा,
0: स्टोरी
1: आहे
0: भरपूर असतील।
1: आहे आहे श्रद्धा। माझे उर्दू मीडियमचे दोन मुली आहे, त्यांना गोल्ड मेडल भेटलेला आहे या लँग्वेज मध्ये। त्यांनी आय थिंक फ्रेंच में किया है, फ्रेंच लैंग्वेज में। और जब फर्स्ट टाइम उनको एक को मिला है गोल्ड मेडल, तो हम लोग बहुत खुश हो गए थे। और जब भी हमारा इनर व्हील का जो हमारा एनुअल प्रोग्राम होता है डिस्ट्रिक्ट के साथ में, और जहाँ पर हम लोग न्यू प्रेसिडेंट को फेलिसिटेट करते हैं, इंडक्ट करते हैं, उस प्रोग्राम में मैंने उस बच्चे को बुलाया और पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे मेंबर्स आए थे उनको भी बताया कि देखो हमारे बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं, गोल्ड मेडल मिला है। और उनको फिर हम लोगों ने फेलिसिटेट किया था, जहाँ पर मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने अपने तरफ से उन बच्चों को एनवलप दिए थे कुछ कैश के साथ। तो ये जब एक बार शुरू किया तो हर साल अभी हम लोग ये करने लगे हैं कि जो भी बच्चे टॉपर्स है, 90+ लाते हैं, गोल्ड मेडल लाते हैं, तो उनको हम लोग फेलिसिटेट करते हैं, ताकि बताने के लिए कि दूसरे भी उससे कुछ सीखे और उनको वो करे। तो ये बहुत बढ़िया काम चल रहा है हमारे पास भी।
0: बढ़िया। तुम्हाला कधी वाटलं का की आपण सुद्धा या भाषा शिकाव्यात आणि तुम्ही कधी प्रयत्न केला का?
1: नाही मी केला नाही खरं सांगते मी काय केला नाही, कारण काय आहे, मला उर्दू येते है, मला इंग्लिश येते है, मराठी येते है, हिंदी येते है। आता पाचवी लँग्वेज शिकून मला असं वाटतं की काय करायचं म्हणून, पर शिकू शकते, तसं काय नाही आहे। हमारे मतलब एज कोई वो नहीं है, हम सीख सकते हैं। आई एम 60+ बट स्टील आई वॉन्ट टू गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम. सीखना चाहिए, जब भी ऐसा कभी हमको आ गया कि हमको किधर उसके लिए यूज करना है, तो वी विल फील लाइक कि हाँ, प्राउड ही फील होता है कि हाँ चलो एक और लैंग्वेज अपनी लाइफ में आ गई है, यू नो.
0: वाह, खूब अच्छा.
1: अभी अभी आपकी बातों से मुझे ऐसे लग रहा है
0: हाँ?
1: कि अभी मुझे ये लैंग्वेज जो है सिर्फ स्कूल के लिए ही नहीं रखना है, मुझे ओल्ड एज होम्स में भी चालू करनी चाहिए. मुझे एनजीओ जितने भी है पूना के, सब जगह पे जाके बताना चाहिए कि हर कोई सीख सकता है. तो आई थिंक ये इनिशिएटिव हम लोग लेते हैं अभी नेक्स्ट ईयर.
0: नक्की नक्की
1: नक्की.
0: मी कारणीभूत ठरणार असेल तर मला नक्कीच आनंद होईल की माझ्या
1: बोलण्यामुळे तुम्हाला. ऐसे ही होता है ना, बातों बातों में हमको कुछ और लाइट मिल जाता है, कहीं से कुछ और इंस्पिरेशन मिल जाता है.
0: नक्कीच, कारण की काय होतं, जसं जसं वय वाढत जातं तसं तसं एकटेपणा येतो माणसाला आणि विरंगुळा काय करावा हा प्रश्न पडतो. बऱ्याच वेळेस नातवंड सोबत नसतात, मुलं कामानिमित्त बाहेर असतात, मग अशा ज्या सिनियर सिटीजन आहेत त्यांना घर खायला उठतं असं म्हणतो ना आपण की काय करावं हे कळत नाही. त्यांचा माइंड जर का आपण डायव्हर्ट केला कुठेतरी तर त्यांचा वेळ सुखकर जाईल असं अशी आपण
1: छान म्हणते. खूप खूप छान म्हणते तू, बरोबर. हे माझा एक्सपिरियन्स आहे म्हणून मी सोशल वर्क सोडत नाही, कारण हे आमच्या दुसरं व्हिटॅमिन्स आहे मी म्हणे. कारण आता काय करायचं, सगळे बिझी झाले, मुले पण आपल्या आपल्या कामात बिझी झाले, तर आम्ही काही ना काही करू करते राहणार आहे, करते रहेंगे. और हमारे पास जितनी भी जो भी हमारा एक्सपीरियंस हम कम्युनिटी से शेयर करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे.
0: आज आपण सगळ्यांकडून इथे उपस्थित राहिलात, इतका छान.
1: आणि हे प्रोग्राम खतम होने से पहले मैं मुक्ति मॅडम को भी बहुत बहुत थँक यू करना चाहूंगी. मुक्ति पानसे मॅडम ने जो डिस्ट्रिक्ट चेअरपर्सन थे, उन्होंने ये लाया है और हर बार वो अप्रिशिएट करते हैं कि अरे तुम लोग फ्लोआ के लिए काम कर रहे हो करके. तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद. शैलेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जाता जाता आपल्याला जे काही ऐकणारे श्रोते आहेत त्यांना काही सल्ला द्यावासा वाटतो का फॉरेन लँग्वेज शिकण्याविषयी?
1: कि जरूर जरूर करो आप लोग, इसकी वजह से आप लोग पूरी दुनिया में घूम सकते हो, जहाँ भी हर जॉब के लिए जा सकते हो. अभी हमारे इंडिया में भी काफी कुछ जर्मन कंपनीज आए हैं, फ्रेंच की कंपनीज आए हैं, वहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है. आप सेल्स में जा सकते हो, आप फॉरेन में गए तो आपको कोई तरह की परेशानी नहीं होगी. और ज़रूर सीखना चाहिए, मैं तो समझती हूँ, कोई भी फील्ड में अगर आप लोग टूर एंड ट्रैवल्स करके भी फील्ड में अगर कुछ करते हो, वहाँ भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा. ये लैंग्वेज के फ़ायदे बहुत होते हैं. ये कोई भी चीज़ हम सीखते हैं वो कभी हमारे वेस्ट नहीं होती है, उसका फ़ायदा हमको ज़रूर ज़रूर मिलता है. तो मेरी ये इच्छा है कि हम सभी से कहूंगी, स्टूडेंट्स से, कि जरूर सीखे. स्टूडेंट्स भी नहीं बल्कि एडल्ट्स भी सीखे, और नॉट ओनली फॉर लेडीज बट जेंट्स भी सीखे. तो परदेशी भाषा शिकण्याची संधी आपल्याला केव्हा पण कधी पण भेटली तरी करायला पाहिजे.
0: वा, खूपच छान. ह्याच हॅपी नोट वरती आज मी आपल्या सगळ्या श्रोत्यांची आणि तुमची रजा घेते. धन्यवाद मॅडम.
1: थँक्यू व्हेरी मच. एक और शेअर बोलतो श्रद्धा?
0: जी, जरूर जरूर.
1: मैं सभी से बोलना चाहूंगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है.
0: बढ़िया,
1: मतलब अपने आप को इतना ज्यादा ऊपर उठा लो कि कोई तकदीर बनाने वाला भी पूछे कि तुम क्या चाहते हो, आपकी रजा क्या है, आपकी इच्छा क्या है.
0: जी,
1: तो बस हर एक को अपने आप को इतना उठाना है. आरजे श्रद्धा, थँक्यू व्हेरी मच.
2: तर मंडळी, फॉरेन लँग्वेज ऑनलाईन ऍप्लिकेशन्स ह्या कार्यक्रमामध्ये आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची.

प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री गणेश प्रथम पूज्य देव हैं। अतः किसी भी कार्य से पहले इनकी वंदना और आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग सच्चे दिल से इनकी वंदना करते हैं, उनकी जिंदगी हर विघ्न बाधाओं से मुक्त एवं सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। अतः हम सबों को इनकी वंदना सच्चे दिल से करने चाहिए। तो आइए हम सभी मिलकर इनकी वंदना करते हैं।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: रसिक म्हणून नमस्कार, आणि मी आहे आरजे श्रद्धा, अर्थातच वारली चित्रकलेवरची श्रद्धा अशी आरजे श्रद्धा. रसिक हो FLOA म्हणजे फॉरेन लँग्वेज ऑनलाईन ऍप्लिकेशन या कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं अतिशय मनपूर्वक स्वागत. आपण गेल्या काही दिवसापासून विविध मान्यवरांशी गप्पा मारतो आहोत, ज्यांनी फॉरेन लँग्वेज शिकले आहेत किंवा शिकवत आहेत अशा विविध वयोगटातल्या व्यक्तींशी आपण ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून गप्पा मारतो आहोत. शैलेश लेले सर आणि फॉरेन लँग्वेज ऑनलाईन ऍप्लिकेशन यांनी सुरू केलेला एक छानसा इनिशिएटिव्ह म्हणजे जर्मन आणि फ्रेंच भाषा ऑनलाईन पद्धतीने शिकवणं. गेल्या काही दिवसापासून आपण विविध वयोगटातल्या व्यक्तींशी गप्पा मारतो आहोत. त्याच अनुषंगाने आजच्या भागात आपल्याशी गप्पा मारण्यासाठी सहभागी झालेले आहेत खास पुण्याहून शरगुफ्ता अनवर सय्यद मॅडम, ज्या रिटायर्ड प्रिन्सिपल आहेत अंजुमन इस्लाम पॉलिटेक्निक फॉर गर्ल ह्या कॉलेजच्या, त्या दोन वेळा इनरव्हिल क्लबच्या प्रेसिडेंट राहिलेल्या आहेत. त्यासोबतच त्यांनी दोन वेळेला सब कॉर्डिनेटर हे पद डिस्ट्रिक्ट लेवलवर भूषवलेलं आहे आणि आता सध्या त्या अंजुम कॅम्पसच्या ऍडव्हायझरी बोर्ड कमिटी मेंबर आहेत. आज त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत आणि त्यांच्याकडून त्यांचा प्रवास आणि फॉरेन लँग्वेज ऑनलाईन ऍप्लिकेशन सोबतचा प्रवास जाणून घेणार आहोत. सगळ्यात आधी मी त्यांचं स्वागत करते. मॅडम, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में.
1: और थैंक यू वेरी मच, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जी, इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए सबसे पहले मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ.
1: नहीं, इट्स माय प्लेजर टू टॉकिंग टू यू, बिकॉज़ हमने फॉरेन लैंग्वेज पर बहुत काम किया है एंड आई एम ग्लैड टू डॉक्टर, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूंगी.
0: जी जी जी, तर गप्पांना आपण सुरुवात करूया. आता तर पुढचं सगळं संभाषण आपण मराठी आणि हिंदी या भाषेमध्ये करणार आहोत. तर मंडळी, इतका मोठा प्रवास आहे मॅडमचा, इतक्या वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांनी विविध पद भूषवलेली आहेत आणि खूप छान काम त्यांचं आतापर्यंत आहे आणि त्यांना खूप मान सन्मान आहे ह्या क्षेत्रामध्ये. मुळातच मुलींसाठीच हे पॉलिटेक्निक कॉलेज आणि इथे आपण प्रिन्सिपल राहिलात, तर हा अनुभव कसा होता त्याबद्दल काय सांगा?
1: आर जे श्रोता, आय वर्क देअर, मीन्स लाईक मी तिथे 20 वर्षापासून काम करत आहे आणि पुन्हा पण पुढे पण माझी इच्छा आहे की मी खूप खूप काम करू. आम्ही मुलींसाठी आणि लेडीजसाठी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हैं, जहाँ पर हम लोग उनको अलग अलग स्किल डेवलपमेंट में डालते हैं. और जहाँ पर मैं प्रिंसिपल थी वहाँ पर, तो अभी भी मेरा वहाँ पर जो भी मेरा मैंने जो कमी लिया है, जो सीखा है, मैं चाहती हूँ कि मैं कम्युनिटी को देती रहूँ और काम करती रहूँ. मैं सोशल वर्क बहुत करती हूँ. आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र. मी मराठी बोलू शकते पण इतकी छान नाही बोलू शकते जसं तुम्ही बोलतात आहे. तर हे माझा प्रवास हे आहे की मी एज्युकेशनिस्ट आहे आणि सोशल वर्कर आहे. मी माझ्या हे इच्छा आहे की मी हेच काम करू. या कामात मला खूप खूप आनंद भेटते.
0: आपण खूप पॅशनेटली करत आहात, एकदम डेडिकेशननी करत आहात हे तुमच्या बोलण्यातून जाणवतो आहे. तर हा 20 वर्षातला प्रवास कसा होता? काही अडथळे आले का किंवा समाजातल्या काही भागाकडून विरोध झाला का कधी? कारण आपण खूप मोठं पद भूषवत होतात, प्रिन्सिपल म्हटल्यावरती अनेक जबाबदाऱ्या असतात, अनेक लोकांना अनेक पातळ्यांवरती समजून घ्यायचं असतं. तर ही जर्नी कशी होती, घरातून कसा सपोर्ट होता, थोडस तुमच्याबद्दल सुद्धा जाणून घ्यायला आवडेल.
1: श्रद्धा, असं आहे की जब तक की हमको घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं कर सकते, और स्पेशली हस्बैंड का सपोर्ट. तो मेरे हस्बैंड ने भी, मेरे बच्चों ने भी मुझे सपोर्ट किया है और मैंने जो भी काम किया है मैंने उसको एंजॉय किया है. मैंने हमेशा सोचा है कि काम को अगर एंजॉय किया जाए तो कभी बर्डन नहीं लगता है. और एक हमारे विश्वास के साथ, हमारे दिल से और हम पूरा कॉन्फिडेंट के साथ करेंगे तो कभी कोई अड़चन नहीं आती है. और अड़चन भी आई तो उसका सोल्यूशन हमको निकालना है और आगे बढ़ना है. तो इस चीज के साथ मैंने अपना सफर गुजारा है. इनफैक्ट अगर आप कहेंगे कि मैंने इतना भी मतलब हेल्प की है गर्ल्स की, कि कभी कभी मैं देखती थी कि कुछ कुछ स्टूडेंट जो है वो एग्जाम नहीं देते और बैठे रहते, तो मैं बोलती हूँ भाई बेटा आपने एग्जाम क्यों नहीं दे रही हो, आज तो पेपर चल रहा है, आपका तो प्रैक्टिकल चल रहा है. मैडम, प्रैक्टिकल के लिए मेरे पास मटेरियल नहीं है. इमिडिएटली हमने उसको मटेरियल प्रोवाइड किया है और उसको काम करवाया है. एजुकेशन के लिए मुझे लगता है कि अगर हम जितना भी काम करें अपनी इंडियन कम्युनिटी के लिए तो उतना वो सब कम है, क्योंकि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो मैं इस पर विश्वास करती हूँ और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ती हूँ, और जहाँ भी मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है मैं जरूर देती हूँ।
0: इतनी नेकी से आप काम कर रही है मैम, बहुत अच्छा लग रहा
1: थैंक
0: है
1: यू
0: आपसे बात करते हुए। बिल्कुल,
1: थैंक यू थैंक यू वेरी मच।
0: आज के इंटरव्यू से बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं इंस्पायर होने वाली हैं आपकी बातचीत
1: थैंक
0: सुनके।
1: यू। मैं एक शेर बोलूंगी यहाँ पर, आपने जब कहा है तो काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर के मिसाल बन जाए।
0: क्या बात है,
1: जी तो
0: बहुत
1: जी जी
0: बढ़िया। तो गर्ल्स कम्युनिटी में आप इतने सालों से काम करती रही, उसके
1: बिल्कुल
0: बाद मतलब उसी दौरान आप इनर व्हील क्लब की भी प्रेसिडेंट रह चुकी है। जब आप प्रेसिडेंट थे 2 साल, तब इनर
1: जी।
0: व्हील काम किस तरह से चल रहा था? कुछ एक्स्ट्रा के एफर्ट्स आपने डाले होंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स
1: एक्चुअली
0: किए होंगे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल किए हैं शरणा, बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं। इनरवेल एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, और हम इंडिया के डिस्ट्रिक्ट 313 के लिए काम करते हैं, जहाँ पर मैं 2 बार प्रेसिडेंट बन चुकी हूँ। और उनके अपना प्रोजेक्ट्स होते हैं हमको, जैसे कि इसमें ओल्ड एज होम्स में काम करना है हमको, ऑफनेजेस के लिए काम करना है हमको, मेडिकल के लिए काम करना है हमको, इसमें इन्वायरमेंट के लिए काम करना है। तो अलग अलग फील्ड में हम पूरा पूरा, हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होकर काम करें, और एजुकेशन में भी, और मैं खासतौर से मेडिकल में मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं, और स्पेशली जो मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट था मेडिकल में भी, के सर्वाइकल कैंसर चेकअप के लिए, तो उसमें भी हमको सर्वाइकल कैंसर चेकअप में मैंने ऑलमोस्ट मेरे 10 ईयर में 80 लेडीज का चेकअप हो चुका है, और जो भी लेडीज ने किया है उनको फ्री, प्रयास ऑर्गेनाइजेशन एक एनजीओ है प्रयास, उनके थ्रू हमको वैन आती थी, और हर हम स्कूल में बोलो, बस्ती में बोलो, वहां पर हम कैंप लगाकर हम ये, और उसमें जो भी लेडीज को अगर कोई पॉजिटिव कुछ रिजल्ट आता है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें मुझे बड़ी खुशी होती थी कि कोई तो हमने किसी के तो काम आए हैं और कुछ तो हमारा फायदा हुआ है। सेकंड चीज, हमने एजुकेशन में भी काफी काम किया है, हमने इनर व्हील के थ्रू हम लोगों ने इसको स्कूल के स्पॉन्सर की, मेरे लिए ना मतलब शरदा, एक इनर व्हील और एक अंजुमन कैंपस मेरे लिए 2 प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं ये काम करती हूँ। इनर व्हील के प्रोजेक्ट अंजुमन को लाती हूँ, अंजुमन के थ्रू इनर व्हील को भी हम हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें जाते हैं, जैसे कि ओल्ड एज होम्स में जाते हैं, तो मैं अपने अंजुमन के ब्यूटी कल्चर स्टूडेंट्स को लेकर जाती हूँ, और हमारे जितने ओल्ड एज होम्स में जो लेडीज रहते हैं बेचारे, मतलब रहते के कोई बात तो करे उनके साथ आकर, तो उनके लिए हम पैम्परिंग सेशन रखते हैं, जहाँ पर वो उनके हेड मसाज देते हैं, उनको पेडिक्योर मैनिक्योर करते हैं, बॉडी मसाज देते हैं, और वो लोग बहुत खुश होते हैं, और हम लोग यही खुशी सबके चेहरे पर देखना चाहते हैं। हमारा इनर वेल का मोटो यही होता है कि हम सभी की हेल्प करते रहे और अलग अलग फील्ड में करते रहे। तो इसी तरह एक फील्ड मेरे लिए आया है, फॉरेन लैंग्वेज ऑनलाइन एप्लीकेशन, और उसके लिए भी मैंने एक ही अंजुमन में नहीं किया है, दूसरे भी स्कूल्स में किया है।
0: तुम्ही 2 वेळा सब कोऑर्डिनेटर सुद्धा राहिलेले आहात,
1: हो,
0: मग तेव्हा तुमच्यावरती कोणकोणत्या जबाबदाऱ्या होत्या आणि ते
1: हे
0: काम?
1: होता है कि आमच्या हे काम सब झोनल सब कोऑर्डिनेटर असे होता कि त्यांच्या अंडर, म्हणजे 4 से 5 क्लब मेरे अंडर में रहे हैं, तो उन पर ध्यान देना है, वो वहां के प्रेसिडेंट सब बराबर कर रहे हैं कि नहीं, उनके मिनट जा रहे हैं कि नहीं, उनका टाइम टू टाइम अब उनके मेंबर्स को सब कुछ मिल रहा है कि नहीं, उनके प्रोजेक्ट्स ठीक से हो रहे हैं कि नहीं, तो हमारा एक्सपीरियंस जो है हम उनको बताते हैं, उनको सिखाते हैं और उनके साथ में काम करते हैं। और सारे पूना में अभी तो ज्यादा, जब मेरे टाइम में 18 क्लब्स थे, अभी तो 22 हो गए हैं आई बिलीव, तो हम सारे ही क्लब्स के मेंबर्स को एक साथ लाकर, प्रेसिडेंट्स को एक साथ लाकर एक बड़ा सा प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें मैं एक एक्सपीरियंस बताऊंगी आपको कि मैं हमारा हमने मास मैरिज किया था, मास मैरिज में हमने कुछ 11 कपल्स की शादियां करके दी थी तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।
0: जी,
1: तो ये होता है जोनल सब कोऑर्डिनेटर का काम। थैंक
0: वाह क्या बात है, बढ़िया। उसके बाद
1: यू।
0: तुम्हारे ये अंजुमन कैंपस के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूंगी। तुम
1: जी।
0: इतना सारा तजुर्बा होने पर ही कोई व्यक्ति एडवाइस कर सकती है ना? तो
1: यस
0: आपके
1: करेक्ट।
0: पास वो इतनी सारी जमा पूंजी हो गई है कि यू आर द राइट एंड अथॉरिटी पर्सन हु
1: थैंक
0: एडवाइस।
1: यू थैंक यू वेरी मच।
0: जी।
1: मैं अंजुमन कैंपस के बारे में ये बताना चाहूंगी कि वहां पर हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑफनेज है अभी। एट द टाइम वहां पर 133 इनमेट्स है, मतलब गर्ल्स हैं, और उनको 5 ईयर्स से लेते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं। और हमारे पास उर्दू मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जूनियर कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है। तो हम उनको पूरी तरह से उनको एजुकेशन देकर उनको सेल्फ रिलायंट करते हैं। जैसे कि कोई ना कोई उनको हाथ में ब्यूटिशियन का कोर्स दे दिया, या उनको टेलरिंग करा दिया, फैशन डिजाइनिंग करा दिया, इस तरह से उनको सेल्फ रिलायंट बनाकर, और फिर उनकी शादियां होती है।
0: क्या बात है,
1: जी मैम।
0: म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की त्या मुलींना स्वतःच्या पायावर उभं करून मग
1: हो,
0: आपण त्यांच्या संसारासाठी त्यांना आपण सक्षम करतो असं म्हणायला काही हरकत
1: बरोबर, बिलकुल बरोबर। और नॉट ओनली फॉर मुस्लिम बट आउटसाइडर्स ऑल्सो, ऑल द कास्ट,
0: नाही।
1: वी आर सेक्युलर ऑर्गनायझेशन।
0: जी, समाजातल्या सगळ्या स्तरावरच्या महिलांना आपल्या पायावर उभं करून त्यांचं शिक्षण करून त्यांना वैवाहिक आयुष्यासाठी आपण सक्षम करत असतो असं म्हणायला काही
1: यस,
0: हरकत नाही।
1: थँक यू श्रद्धा। मी एकटी नाही आहे, खूप मोठी टीम आहे आमची।
0: नक्कीच। बरं, आता आपण येऊया फॉरेन लँग्वेज ऑनलाईन ऍप्लिकेशन कडे।
1: यस
0: तुम्हाला
1: श्रद्धा।
0: शैलेश लेले सरांचा परिचय नेमका कधी झाला आणि अशा पद्धतीची ही कॉन्सेप्ट सुरू आहे हे कधी समजलं?
1: मी तिथे जेव्हा प्रेसिडेंट होती 2022-23 मध्ये, त्यावेळी आमचे डिस्ट्रिक्ट चेअरमॅन होते मुक्ती पानसे मॅडम। मुक्ती पानसे मॅडमने हे कॉन्सेप्ट आणला की चला आपण सगळे मिळून हे फॉरेन लँग्वेज सुरू करूया म्हणून, आणि त्यांनी आमची ओळख करून दिली आमचे सर शैलेश लेले सर। और शैलेश लेले से मिलकर हमको बहुत खुशी हुई जब उन्होंने बताया इस लैंग्वेजेस के बारे में। और सबसे अच्छी बात ये थी कि बच्चों को हमको ज्यादा बर्डन नहीं था फीस का, क्योंकि हम लोग जिस पॉकेट्स के लिए काम करते हैं, हम लोग जैसे कैसे कहेंगे कि जैसे बस्ती में भी जाके बच्चों को लाते हैं और हम लोग उनको पढ़ाते हैं, तो उस टाइप के, उस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए जो फीस का जो अमाउंट था वो बहुत कम था। क्योंकि शैलेश ने पहले से ही, इन्होंने, मिस्टर लेले ने प्लान किया था कि उन्होंने कंपनी का CSR लेकर आया था, और मतलब एक ही स्टूडेंट को 175 रुपीज सिर्फ हम उनको एग्जाम फीस देनी होती है। तो वो जब से अभी तक भी ये चल रहा है, और मैं समझूंगी कि बहुत अच्छा काम चल रहा है।
0: तुम्ही खूप छान मुद्दा इथे उपस्थित केला की ज्याच्यावरती मी येणारच होते की अगदी पॉकेट फ्रेंडली आहे, तर ह्या गोष्टीचं कायमच कौतुक आहे। सरांनी खरोखरच हा खूप छान एक इनिशिएटिव्ह घेतलाय की अतिशय
1: बरोबर
0: कमी माफक दरामध्ये आपण ह्या भाषा शिकू शकतो। तर ज्या वेळेला
1: करेक्ट।
0: तुम्हाला ह्या कोर्स बद्दल समजलं मग तुमचा काय याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन
1: हे
0: होता?
1: झालं की
0: कसं?
1: आम्ही त्यांना इन्व्हाइट केला मुक्ती मॅडमला, आणि आमचे टीचर्सला, आणि लेले सरला, आणि आमचे हॉल मध्ये आम्ही एक प्रोग्राम केला। त्याच्यामध्ये लेले सरनी हे फॉरेन लँग्वेज बद्दल खूप माहिती दिली, आणि त्यांनी सांगितलं की हे कसे चालणार आहे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अँड लेवल 4। आणि त्यांनी हे पण सांगितलं की जेव्हा पण आम्हाला त्यांची गरज असेल या कुछ मदत चाहिए, तो वो हमेशा हमको हेल्प करेंगे। और वैसा ही हुआ है। लेले सर को हमने जब भी फोन किया है, लेले सर ने आकर हमारे अंजुमन कैंपस में हमारे लिए काम किया है। ये यहाँ पर नहीं, मैंने एक लेडी जुबैदा में भी इनको बुलाया था, वहां भी वो बराबर टाइम पर आकर और पूरे हमारे प्रोग्राम में उन्होंने बताया था फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। और जब से अभी तक उधर भी ये प्रोग्राम चल रहा है। थर्ड स्कूल मैंने लिया था सरदार दस्तूर स्कूल। तो मैं अभी आपको बताना चाहूंगी श्रद्धा के फर्स्ट टाइम मेरे अंजुमन में 100 स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के इनरोल हुए थे, उन्होंने रजिस्टर किया था। उर्दू मीडियम से 48 स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए थे, लेडीज उबैदा से 80 हुए थे, और मुझे सबसे अच्छा रिस्पांस मिला था सरदार दस्तूर स्कूल से 680 स्टूडेंट्स।
0: वाह,
1: तो ऑलमोस्ट मेरे पास 900 स्टूडेंट्स थे उस साल में, और
0: क्या बात
1: बहुत मजा आया था इसमें काम करने से।
0: है,
1: इसका
0: वाह,
1: बेनिफिट भी बहुत है। ये ग्लोबल लैंग्वेज है, मतलब हम लोगों का आजकल पूरा इंडिया में हर जगह पर सब चीज ग्लोबल हो गई है। हमारे
0: जी
1: फोन में, हाथ में फोन होता है और हम फॉरेन में क्या चल रहा है वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फॉरेन लैंग्वेज भी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। ये एक बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज देती है। बच्चे जहां भी जाएंगे, अभी जैसे नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गए हैं, टूरिज्म में है, एजुकेशन में है, जहां पे ट्रांसलेशन करना मुश्किल होता है, इंटरनेशनल बिजनेस है, इसमें बहुत फायदा है। और उसके साथ साथ मैं बताऊंगी कि फॉरेन लैंग्वेज से बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, इम्प्रूव होता है, बेटर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए इजी होता है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि माय सन इज आल्सो डॉक्टर, माय हस्बैंड इज अ डॉक्टर बाय द वे, माय सन इज आल्सो डॉक्टर व्हेन ही वेंट टू जर्मनी। तो जर्मनी में वहां पर वो लोग इंग्लिश को तो बिल्कुल ही कुछ वो नहीं देते हैं इम्पोर्टेंस, वो लोग अपनी ही लैंग्वेज बोलते हैं। तो ही हैज टू लर्न जर्मन लैंग्वेज फर्स्ट एंड देन वो वहां पर गया है। लेकिन ये बच्चे अगर फ्यूचर में वहां जाते हैं, जहां भी जाते हैं दुनिया में, उनके लिए बहुत फायदा है। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनको कल्चरल अंडरस्टैंडिंग आएगी, उनकी पर्सनल ग्रोथ होगी और लर्निंग एबिलिटी भी बढ़ेगी, ऐसा मेरा ख्याल है। थैंक
0: क्या बात, बढ़िया।
1: यू वेरी मच।
0: याचा अजून एक प्लस पॉइंट असा आहे की आपण कुठल्याही वेळेत आणि कुठल्याही वयोगटातली व्यक्ती शिकू शकते, म्हणजे फक्त शाळेतले विद्यार्थी किंवा कॉलेजचे विद्यार्थी नाही, तर
1: नाही,
0: ऑल एज ग्रुपच्या लोकांसाठी हा कोर्स आहे आणि ऑनलाईन
1: बरोबर,
0: शिकल्यामुळे तुम्ही दिवसभरातली कामं आटपून किंवा ज्या काही गृहिणी आहेत, जे सिनियर सिटीजन आहेत, ते विरंगुळा म्हणून सुद्धा एखादी भाषा शिकू शकतात, किंवा
1: बरोबर,
0: आपली मुलं तिथे आहेत म्हणून त्यांच्यासाठी आपल्याला भाषा यायला हवी म्हणूनही शिकू शकतात. तर याबद्दल
1: बरोबर।
0: तुम्हाला काय वाटतं?
1: आमचे आमचे खूप सारे टीचर्स ने शिकलेले आहे, हमारे बहुत सारे टीचर्स ने भी सीखे हैं, इवन लेडी जुबैदा के टीचर्स ने भी सीखे हैं। मुझे लगता है कि लैंग्वेज और ये जो चला रहे हैं शैलेश जी, इसके लिए हमको कोई एज वो नहीं चाहिए। हम कोई भी एज में किसी को भी हम लोग इनरोल कर सकते हैं, और कोई कास्ट का कोई टाइप नहीं है, कोई भी कास्ट के लोग इसको सीख सकते हैं। मराठी वाले स्टूडेंट्स भी सीख रहे हैं, मराठी मीडियम वाले भी, इंग्लिश वाले भी और उर्दू वाले भी। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हर एक के लिए ओपन है, टाइम की कोई बाउंडिंग नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि अगर कोई लेडी है, हाउसवाइफ है और घर में काम कर रही है, उसके बावजूद उसको सीखना है तो जरूर सीख सकती है। सभी को हम वेलकम करते हैं इस लैंग्वेज के लिए।
0: बढ़िया. एवढ्या वर्षांमध्ये अनेक अनुभव असतील आणि फॉरेन लँग्वेज ऑनलाईन ऍप्लिकेशन चे सुद्धा काही वेगळे असे अनुभव असतील की एखाद्या विद्यार्थ्याने खूप घवघवीत यश मिळवलं किंवा त्याचा पेपरला फोटो आला, अशी
1: यस
0: काहीतरी
1: श्रद्धा,
0: स्टोरी
1: आहे
0: भरपूर असतील.
1: आहे आहे श्रद्धा। माझे उर्दू मीडियमचे दोन मुली आहे, त्यांना गोल्ड मेडल भेटलेला आहे या लँग्वेज मध्ये। त्यांनी आय थिंक फ्रेंच में किया है, फ्रेंच लैंग्वेज में। और जब फर्स्ट टाइम उनको एक को मिला है गोल्ड मेडल, तो हम लोग बहुत खुश हो गए थे। और जब भी हमारा इनर व्हील का जो हमारा एनुअल प्रोग्राम होता है डिस्ट्रिक्ट के साथ में, और जहाँ पर हम लोग न्यू प्रेसिडेंट को फेलिसिटेट करते हैं, इंडक्ट करते हैं, उस प्रोग्राम में मैंने उस बच्चे को बुलाया और पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे मेंबर्स आए थे उनको भी बताया कि देखो हमारे बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं, गोल्ड मेडल मिला है। और उनको फिर हम लोगों ने फेलिसिटेट किया था, जहाँ पर मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने अपने तरफ से उन बच्चों को एनवलप्स दिए थे कुछ कैश के साथ। तो ये जब एक बार शुरू किया तो हर साल अभी हम लोग ये करने लगे हैं कि जो भी बच्चे टॉपर्स है, 90+ लाते हैं, गोल्ड मेडल लाते, तो उनको हम लोग फेलिसिटेट करते हैं, ताकि बताने के लिए कि दूसरे भी उससे कुछ सीखे और उनको वो करे। तो ये बहुत बढ़िया काम चल रहा है हमारे पास भी।
0: बढ़िया. तुम्हाला कधी वाटलं का की आपण सुद्धा या भाषा शिकाव्यात आणि तुम्ही कधी प्रयत्न केला का?
1: नाही मी केला नाही खरं सांगते मी काय केला नाही, कारण काय आहे, मला उर्दू येते है, मला इंग्लिश येते है, मराठी येते है, हिंदी येते है। आता पाचवी लँग्वेज शिकून मला असं वाटतं की काय करायचं म्हणून, पर शिकू शकते, तसं काही नाही आहे। हमारे मतलब एज कोई वो नहीं है, हम सीख सकते हैं। आई एम 60+ बट स्टिल आई वॉन्ट टू गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम. सीखना चाहिए, जब भी ऐसा कभी हमको आ गया कि हमको किधर उसके लिए यूज करना है, तो वी विल फील लाइक कि हाँ, प्राउड ही फील होता है कि हाँ चलो, एक और लैंग्वेज अपनी लाइफ में आ गई है, यू नो.
0: वाह, खूब छान.
1: अभी अभी
0: अब
1: आपकी बातों से मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी मुझे ये लैंग्वेज जो है सिर्फ स्कूल के लिए ही नहीं रखना है, मुझे ओल्ड एज होम्स में भी चालू करनी चाहिए.
0: जी
1: मुझे एनजीओ जितने भी है पूना के, सब जगह पे जाके बताना चाहिए कि हर कोई सीख सकता है. तो आई थिंक ये इनिशिएटिव हम लोग लेते हैं अभी नेक्स्ट ईयर
0: नक्की नक्की, जेवढा
1: की.
0: जेवढा मी कारणीभूत ठरणार असेल तर मला नक्कीच आनंद होईल की
1: थैंक
0: माझ्या
1: यू तुमचे.
0: बोलण्यामुळे
1: नहीं,
0: तुम्हाला
1: ऐसे ही होता है ना, बातों बातों में हमको कुछ और लाइट मिल जाता है, कहीं से कुछ और इंस्पिरेशन मिल जाता है.
0: नक्कीच. कारण की काय होतं, जसं जसं वय वाढत जातं तसं तसं एकटेपणा येतो माणसाला, आणि विरंगुळा काय करावा हा प्रश्न पडतो. बऱ्याच वेळेस
1: करेक्ट,
0: नातवंड सोबत नसतात, मुलं कामानिमित्त बाहेर असतात, मग
1: बिल्कुल.
0: अशा ज्या सिनियर सिटीजन आहेत त्यांना घर खायला उठतं असं म्हणतो ना आपण, की काय करावं हे कळत नाही. मग
1: बरोबर
0: त्यांना त्यांचा माइंड जर का आपण डायव्हर्ट केला कुठेतरी, तर
1: बरोबर,
0: नक्की त्यांचा वेळ सुखकर जाईल असं अशी आपण
1: खूप
0: आशा
1: छान
0: व्यक्त
1: म्हणते,
0: करू.
1: खूप खूप छान म्हणते तू, बरोबर. हे माझा एक्सपिरियन्स आहे म्हणून मी सोशल वर्क सोडत नाही,
0: नक्कीच
1: कारण हे आमच्या दुसरं विटॅमिन्स आहे मी म्हणेन. कारण आता काय करायचं, सगळे बिझी झाले, मुले पण आपल्या आपल्या कामात बिझी झाले, तर आम्ही काही ना काही करते रहना है, करते रहेंगे. और हमारे पास जितनी भी जो भी हमारा एक्सपीरियंस, हम कम्युनिटी से शेयर करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे.
0: आणि आज आपण त्याच वेळ काढून इथे उपस्थित राहिलात, इतका छान
1: आणि
0: अनुभव
1: आणि आणि हे
0: शेअर केला.
1: प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं मुक्ति मैडम को भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी. मुक्ति पानसे मैडम ने, जो डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन थे, उन्होंने ये लाया है, और हर बार वो अप्रिशिएट करते हैं कि अरे तुम लोग फ्लोआ के लिए काम कर रहे हो करके, तो उनका
0: नक्कीच.
1: भी बहुत बहुत धन्यवाद. शैलेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जाता जाता आपल्याला जे काही ऐकणारे श्रोते आहेत त्यांना काही सल्ला
1: कि
0: द्यावासा वाटतो का फॉरेन लँग्वेज शिकण्याविषयी?
1: जरूर जरूर करो आप लोग, इसकी वजह से आप लोग पूरी दुनिया में घूम सकते हो, जहां भी हर जॉब के लिए जा सकते हो. अभी हमारे इंडिया में भी काफी कुछ जर्मन कंपनीज आए हैं, फ्रेंच की कंपनीज आए हैं, वहां पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है. आप सेल्स में जा सकते हो, आप फॉरेन में गए तो आपको कोई तरह की परेशानी नहीं होगी. और जरूर सीखना चाहिए, मैं तो समझती हूँ, कोई भी फील्ड में, अगर आप लोग टूर एंड ट्रैवल करके भी फील्ड में अगर कुछ करते हो, वहाँ भी आपको काफी सपोर्ट मिलेगा. ये लैंग्वेज के फायदे बहुत होते हैं, ये कोई भी चीज़ हम सीखते हैं वो कभी हमारे वेस्ट नहीं होती है, उसका फायदा हमको जरूर जरूर मिलता है. तो मेरी ये इच्छा है कि हम सभी से कहूंगी, स्टूडेंट से, कि जरूर सीखे. स्टूडेंट्स भी नहीं बल्कि एडल्ट्स भी सीखे, और नॉट ओनली फॉर लेडीज बट जेंट्स भी सीखे. तो परदेशी भाषा शिकण्याची संधी आपल्याला केव्हा पण कधी पण भेटली तरी करायला पाहिजे.
0: वा, खूपच छान. ह्याच हॅपी नोट वरती आज मी आपल्या सगळ्या श्रोत्यांची आणि तुमची रजा घेते. धन्यवाद
1: थँक
0: मॅडम
1: यू,
0: तुम्ही
1: थँक
0: इथे.
1: यू व्हेरी मच. एक और शेर बोलतो श्वेता.
0: जी, जरूर जरूर, इरशाद.
1: मैं सभी से बोलना चाहूंगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है.
0: बढ़िया.
1: मंजे अपने आप को इतना ज्यादा ऊपर उठा लो कि कोई तकदीर बनाने वाला भी पूछे कि तुम क्या चाहते हो, आपकी रजा क्या है, आपकी इच्छा क्या है. तो
0: जी
1: बस हर एक को अपने आप को इतना उठाना है. आरजे श्रद्धा, थैंक यू वेरी मच.
2: तर मंडळी, फॉरेन लँग्वेज ऑनलाइन ऍप्लिकेशन्स ह्या कार्यक्रमामध्ये आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची.

दिखती है रोज ही ऐसी फिजाएं, मुखड़े के सामने काली घटाएं, हर दिखती है रोज।

0: वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: सर्जन?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा।

0: के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8